नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

त्रीणि चत्वारि ॐ हंस हंसाय विद्महे परम हंस प्रजापतये स्वाहा सद्गुरु परमात्मने नमः।

द्वे त्रीणि चत्वारि ओम कुटध्वजाय कुङ्कुमवर्णाय महामोहनाय वंशवृद्धिकराय

आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, हर तरफ शोर है, हम सबके मन में कोई ना कोई उलझन है। हर इंसान शांति खोज रहा है, उसे एक ऐसे सहारे की तलाश है जो इस शोर के बीच भी मन को शांत रख सके। और तब जब मन को किसी अपने की जरूरत होती है, एक नाम अपने हृदय से निकलता है, शिव। वही शिव जो केवल हमारे भगवान ही नहीं, हमारे सबसे अपने हैं। हमारी हर खुशी में शिव, हमारे हर दुख में शिव, हमारी हर सांस में शिव। तो चलिए कुछ पल के लिए अपने मन को उसी शिव में डुबा दें और अपनी इस छोटी सी भक्ति को उनके चरणों में अर्पित करें। प्रस्तुत है जय शंकर महाराज।

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया। नंदक